जी दोस्तों, सारे दोस्तों का दुआबा रेडियो के मंच उत्ते निघा स्वागत है जी। लैके हाजिर हाँ तुहाडी कचहरी च फिर तो एक बार नवा नवेला प्रोग्राम जिंदगी नामा हाले दुनिया। आप सब नू आदाब सलाम नमस्ते ते प्यार भरे ने की सत श्री अकाल। दोस्तों अज समा ते स्थिति दी गल करिए ते 9 जून 2026 दा दिहाड़ा ते अज समा ते स्थिति फिनलैंड दीआं घड़ियां दे उत्ते शाम दे 7:10 दा समा है ते इसे तरह भारत दे विच रात दे 9:40 हो गए ने ते न्यूयॉर्क ते टोरंटो दीआं घड़ियां दे उत्ते दुपहर दा समा है 12:10 दा। इसे तरह कैलिफोर्निया ते वैंकूवर दे विच सवेर ते 9:00 ते घड़ियां दे उत्ते 10 ने। यूरोपियन कंट्रियां दे मुताबक शाम दे 6:10 ते यूके दे विच शाम दे 5:10 घड़ियां दे उत्ते ने। हुण तों लैके तकरीबन 2.25 घंटे तुहाडा मेरा राबता इसे तरह बरकरार रहेगा। गल्लां बातां लैके हाजिर हां तुहाडी कचहरी च कुछ ना कुछ नवां ते सब तों पहलां अज दे विचार दी गल करांगे ते उस तों बाद दुनियादारी दे विच जाण दी गल होवेगी। देश दे दीआं खबरां ते सियासत विरासत जिंदगी दे नाल जुड़ी गलबात ते कुछ पिछोकड़ इतिहासक ते नाल दी नाल साम्राज वाद दी वी गल किते ना किते चलाउण दी कोशिश रहेगी। स्टूडियो दा नंबर +358 44 976 1962 है ते उम्मीद करदे आं तुहाडे तक आवाज़ ते अंदाज वधिया तरीके दे नाल पहुंच रहा होवेगा। बाकी तुसीं कमेंट्स करके जड़ा दुरुस्त करा सकदे हो जे कोई जड़ा तुहानू तंगी परेशानी जड़ी है दरपेश आ रही है तां उसनू आपां दुरुस्त कर सकदे आं ते नाल नाल ते बाकी मेरे वल्लों तां सारा कुछ सिग्नल जड़े ने सारा कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी तुसीं जरूर तुहाडे तक आवाज़ किवें पहुंच रही है उह जरूर दस सकदे हो। ते लो दोस्तों करदे आं फिर अगाज जिंदगी नामा हाले दुनिया दा ते पाउंदे आं बात सब तों पहलां अज दे विचार दी ते उस तों बाद देश ते दीआं खबरां दे वल नूं चलदे आं। अज जिहड़ा 9 जून दा अज दा विचार है जो खास करके छोटे बच्चे तों लैके एक डर साडे मन दे विच रहिंदा है पर एक डर जिहड़ा वड्डे होके भी साडे मनां दे विचों जां साडे जेहन दे विचों दिमाग दे विचों ब्रेन दे विचों दूर नहीं हुंदा। उह डर है कहिंदे सारे अखौती रब्बां देवत्यां ते वहमां भरमां दी मां है। यह डर जिहड़ा है ते उहनूं कढ़न दे लई बहुत कुछ करना पैंदा है। किताबां दे नाल जुड़ना पैंदा है, चंगी संगत करनी पैंदी है, चंगी पंगत दे विच बहना पैंदा है, आले दुआला जिहड़ा साडा है उहनूं जरूर देखना पैंदा है किहदे नाल उठीए बैठीए क्योंकि मानसिकता दे उत्ते उह सारा आले दुआले दा प्रभाव वी साडे उत्ते पैंदा है। ते इस दे नाल ही जिहड़ा अज दे दिहाड़े दे उत्ते 1716 दे विच तुहानूं लै चलदे आं जदों सिख राज दी गल आउंदी है। 9 जून 1716 नूं सिख राज दे बानी ते जगीरदारी सिस्टम दा खात्मा करन वाले योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी शहादत होई सी अज दे दिहाड़े दे उत्ते ते समां इजाजत देवेगा तां जरूर उहनां दा जिक्र करांगे जिवें हर साल ही करदे आं। 1781 दे विच रेल दे इंजन दी खोज करन वाले जॉर्ज स्टीफन दा जिहड़ा जन्म होया अज उहदा जन्म दिन है ते रेल दा इंजन जिहड़ा उहनां ने लभिया सी 1781 दे विच खोज कीती सी उहदे उत्ते। 1898 दे विच चीन ने ब्रिटेन नूं जिहड़ा सी हांगकांग 98 साल दे लई ठेके दे उत्ते दे दित्ता सी।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास

दुख सह लियो सिदक न हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुझार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कहे।

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये के